0: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: कोई सबै पेपर उर्क सकिया हो
2: सकियो
1: तेरो पर्सनल मोबाइल नम्बर त ब्लक गरी
2: पर्सनल मोबाइल नम्बर त उही दिनै टेलिकम का अफिस जाइबर ब्लक गरी भर आयौ
1: कोई बैंकमी
2: बैंकमी
1: हाँ
2: कई अद्दु पड़े
1: त्यो तो अद्दु पड़न छ आफ्नो मोबाइल नम्बर बदल वा ब्लक भएको आफ्नो बैंकलाई जानकारी दिनु पड़न छ र आफ्नो बैंक खाता को जानकारी औरका हातमै पुग्दो बठे सचेत बनौ
2: सतर्क रहौ ठगी बठै बचौ।
3: सिद्धार्थ बैंक पठै जनहित में जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
5: ना छावा सापन कुछ नहीं कराए सम सांप कुछ नहीं करता लिया वो अपन ही चल गए कुछ कराइल वो सब कुछ सांप बिखा फिर नहीं रहता
6: बिखा हो कि नहीं हो कसी कसी ना दाई
7: लिया नेपाल में पा दिन बिखा सांपन का विषय में सुन एक थोड़ा गरे जा जोन खास कह खा, रातिक समय में घर भीतर बैठे से कटला से निबाई फिर सैकत तर कटल पास डेह भाग जो निचलना कह सास फैर जो निशेकना में से लक्वा हुई से और डोम जोन बड़ा रिसहा मेरी रथ निकर फाट फूले थ डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह खा, संजय बिहान देख पड़ निकर कटल से फिर लक्वा हुई से वो और कैली जाटक सांप निकर कटल कल से कटलक भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रगत से पाती होकर रगत बहना हुई से था उसे का हमार देशक तराई सक्कू भूभाग में पा देना बगोक ने फुनकारना बाधे सांप ई सांप 10 लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा।
8: बर्खा झा को अनाज बिजली न समय में सापन का कटाई अथवा डसाई का घटना ढूर बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा ना सुबेर सापन का डसाई का घटना ढूर बिना कर लग पा दे
9: झूर जसिन सापन का डसाई हानिकारक नहीं रहा वह फिर यदि सपवा डस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
10: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसे पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकते था।
11: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
12: आज त पहिला नौकरीको पहिला महिना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली।
13: तनखा खाइकन होइन बुवा, तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु। हो भने बुवा, पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफमा त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्टका समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाचि मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, तसाईले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
12: ठिक गरिबा, आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
13: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, होइन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 मी सम्पर्क हर्या।
14: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ज।

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर थी राहत
0: का हुई कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चेक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कब्बू पेंसिल हेरे थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिकला झोला है मरमत फेकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर, अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलटमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 13 गते र 20 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर कैलाली।
4: के तपाईलाई थाहा छ,
5: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
4: हो र?
5: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
4: अनि
5: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
4: के छ त विकल्प?
5: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
4: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
5: हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
4: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
5: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टीकापुर कैलाली।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके बिहानिक 9 बजेको खोज खबरमा आफ्नो स्वागत बा खोज खबर सेमै सीता चौधरी के राम राम अपने सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मौला सम्र पात्र और नेपाली पात्र में फिसुन्टी ढलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से थारू सांस्कृतिक मेला महोत्सव सम्पन्न अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस टीकापुर के योग साधना केन्द्र में ढेर सिंह कार्यक्रम करके मनेला

0: गाड़ी संपर्क नंबर 9849588008। विश्राम पाछा फिर से स्वागत बा। अमरावती सामुदायिक बन्दकी वन पैदावार काठी ओ कठुवा बिक्री वितरण संघ सामाजिक काम के क्षेत्र में फेर ढेर काम करती दलबाट बन्दकी उपभोक्ता जीवन सहजता के लाख आवश्यकता के आधार में सघैना कलबाट सामुदायिक बन्दकी ग्रामीण विद्युत ट्रांसमीटर कम्प्यूटर प्रिंटर खरीद जेहेन्दार विद्यार्थी पुरस्कार वितरण लगायत के काम करलबाट यहसंग विपन्न उपभोक्ता हं आर्थिक सहयोग अति विपन्न परिवार हं लत्ता कपड़ा व फर्नीचर फे सहयोग करना कलबाट सामुदायिक बन्दकी ट्रांसमीटर खरीद के लाख सहयोग कर पाछा ग्रामीण विद्युत विस्तार में सजिलो हुआ सामुदायिक बन्दकी सहयोग उपभोक्ता समेत खुशी हुलक सूर्यदय ग्रामीण विद्युत सहकारी के व्यवस्थापक विष्णुनाथ देवकोटाबोटी अमरावती ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था के अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद अधिकारी फिर सामुदायिक बन्दकी कम्प्यूटर प्रिंटर खरीद के लाख सामुदायिक बन्दकी सहयोग कर पाछा उपभोक्ता सेवा प्रवाह में सहयोग पुगलक बोटिलोट सामुदायिक बन्दकी वन पैदावार वितरण संघ सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम करना लगलबाट सामुदायिक बन्दकी उपभोक्ता के आय स्तर सुधारो जीवन सहजता के लाख कर्तिर कार्य मजा हुलको आगामी दिन में उपभोक्ता प्राथमिकता में धरके काम कर पना उपभोक्ता उग्र बोटिल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रपा के पहिलो महाधिवेशन पार्टी स्थापना के चार वर्ष पुगलक अवसर में चितौन के भरतपुर में भव्य रूप में शुरू हुईलबा महाधिवेशन के उद्घाटन सत्र में ढेर सिंह राजनीतिक दल के शीर्ष नेता हुकुनके शुभकामना देती राष्ट्रपा के छोट समय में हासिल कलक राजनीतिक सफलता के प्रशंसा कलबाट सभापति रवि लामिछाने महाधिवेशन के क्रम में पार्टी भीतर गुट उपगुट के राजनीतिक नैकरण नेता तथा कार्यकर्ता हुकुन विशेष आग्रह कलबाट महाधिवेशन 151 सदस्यीय नया केन्द्रीय समिति हो 19 पदाधिकारी चयन कर्णाखुलबाट राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रथम महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसकी नेता गगन थापा विगत के ऐतिहासिक जनमत नेता हुकुनके अहंकार के कारण दुर्घटनामा पलक स्मरण गरेलबाट नेकपा एमालेकी उप महासचिव प्रदीप गेवाली जर्मनी हो दक्षिण अफ्रिका की उदाहरण लेटी प्राप्त जनमत के सही सदैव कर्णा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आग्रह कलबाट नेकपा के नेता वर्षमान पुन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी संघसंघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रति उच्च तह के प्रतिबद्धता देखाइन आग्रह कलबाट खोज खबर में फिर से विश्राम विश्राम पास फिर से विष्णुतिर सामुदायिक रेडियो टीका प्रोफेम
1: वर्षिनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड़ बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजूद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा असमानता बिग्रदो स्वास्थ्य एचआईभी एड्स बलात्कार घरेलु हिंसा बहुविवाह आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुर हेरी 3 वर्ष जेल र 30,000 देखि 75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक शिक्षक समाजसेवी बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान
2: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: के तपाईँ चाया डन्डीफोर दाद एलर्जी कपाल झर्ने समस्याबाट पीड़ित हुनुहुन्छ?
4: अब टिकापुरमा रहेको मनिष मेडिकल हलमा काठमाडौँका वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर लोकेन्द्र लिम्बू यही असार 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
3: मनिष मेडिकल हलमा पाइने सेवाहरू अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने इक्जेमा सोरियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार गरिने।
4: डाक्टर आउने दिन असार 13 गते दोस्रो शनिबार।
3: छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर मनिष मेडिकल टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। साथै प्रत्येक दिन MBBS फिजिसियन डाक्टरद्वारा पेट, छाती, मुटु र थाइराइड चेक जाँच तथा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइन्छ।
4: स्थान मनिष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर 1, कैलाली। सम्पर्क फोन नम्बर 9860071024 र 9046777417।
0: राजापुर नगरपालिका हो गेरुवा गाउँपालिका गरी 5,000 किसान हुक र गेरुवा गाउँपालिका 1 जनकनगर स्थित कर्णाली र थुन्की खेतमा पानी नखुलबाट असारके पहिलो हप्तामा पानी नै पलक रोपाइकिला स्थानीय स्रोत साधनके प्रयोग गर्न श्रमदान गर्की लद्या थुन्की पानी नखुलबाट ओखरिया इन्टेकमा से 10,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई हुन गर्दा खडेरी कल खेतमा पानी नै पुगल पार्छ किसानहरूको ट्र्याक्टरमा झारी झालापट्या व काठी कठुवाले कि नदीमा पुगल रहन् टेकल घर अलग कर्णाली के भंगालो स्थानीय स्रोत साधन के थुनके उखरिया इन्टेकतर्फ पानी नबाट धान लगेना सिजनमा र हरेक वर्ष किसानको अन्के नदीमा अस्थायी बाल धानकी खेतमा पानी पुगिना कलबाट राजापुर सिंचाई योजना कि निर्माण कलक राजापुर सिंचाई प्रणाली अन्तर्गत के संयुक्त बुहेकुलो सिंचाई प्रणाली अन्तर्गत 12 मौजा रहलबा राजापुर सिंचाई प्रणाली व्यवस्थित रूपमा निर्माण नै हुला हरेक वर्ष जोखिममा मोलके किसानहरूको लद्यामा बाँड बाहना पर्न जाय पर्न बाध्यता रहल पानीकी मुहानसँग दूर बुढेकोला किन टेक रहलक पानी बुढेकोला समुदाय पर्न जाय पर्न बाध्यता रहल गोला जल उपभोक्ता संस्था अध्यक्ष धनबहादुर शाही बुटिलबाट और स्थानमा स्थायी रूपमा मुहान बन्न छिपे पुरानो सिंचाई प्रणालीमा स्थायी मुहान नै हुला हरेक वर्ष जोखिम पूर्ण रूपमा लद्यामा पैसा पर्न पलक बुटिलबाट राजापुर क्षेत्र अन्नकी भण्डारलाई छिपे सिंचाई केलाक स्थायी मुहान नै बन्ल किसानको दुःख पुलक खबर फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता 2026 अन्तर्गत समूह एचके आछुल खेलमा स्पेनकी साउदी अरेबियाकी उपजित निकलबाट एन्टालान्टा स्टेडियममा भर्खर सम्पन्न खेलमा स्पेनकी साउदी अरेबियाकी उप 4-0 गोल अन्तर्गतकी जित निकलबाट स्पेनकी खेलके पहिलो हाफमा 3 गोल कलसफे खेलके दोस्रो हाफमा 1 गोल उपहार पहिलो खेलके 10 मिनटमा स्पेन केलाक लामिन यामागले गोल गर्दै टोली पहिलो अग्रता दिल अगरपाछा खेलके 100 मिनटमा मिकेल वायरजबल गोल गर्दै स्पेनकी अग्रता दोब्बर बनिल ओहोके 3 मिनटमा उहाँके मिकेल गोल गर्दै स्पेनकी अग्रता दोब्बर बनिल खेलके 49 मिनटमा साउदीकी खेलाडी हसन अल्तामतीकी स्पेनकी लाग आत्मघाती गोल कर ओकरपाछा खेलमा दुनु टोली मसे गोल फुइ नै सकलक अन्त त स्पेनकी साउदी अरेबियाकी उप 4-0 गोल जित निकल जिससँग स्पेन 2 खेलमा से 4 अङ्क जोड्ती समूह एचकी शीर्ष ठाउँमा अहिलेबाट स्पेनकी विश्वकपकी नकआउट चरणमा पुग्न सम्भावना मजबुत बनेलबाट यस समूह मर्लक उरुग्वे साउदी अरेबिया हो केफ फर्डे के समान 1-1 अंक रहलबा। ए समाचार सँग खोज खबर बढ़ल जेनासी पहिले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फेर सेक्छु। थारू सांस्कृतिक मिला महोत्सव सम्पन्न। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस टिकापुरकी योग साधना केन्द्र मध्यरिसिन कार्यक्रम पर्के मनिल। तिखर दुर्घटनामा 1 के मृत्यु 2 घाइते। विश्वकप फुटबल साउदी अरेबिया के ऊपर स्पेन की जीत। लीजा बुकला खोज खबर रह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद डिटी बुकला खोज खबर से मैं सीता चौधरी बिदा हेटू एगार पांच 12 बजे के खोज खबर सुन सी सामुदायिक रेडियो टीका प्लेटफॉर्म सुनती रवि राम राम।
5: बालक हराएको सूचना टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 भूपू कमैया शिविर टोल बस्ने मायाराम चौधरी र निशा चौधरीका छोरा 10 वर्षीय गोलु भनेर चिनिने रिदम चौधरी वर्ण गहुँ गोरो उचाइ करिब 4 फिट दुवै कानमा सुन लगाएको हरियो टी शर्ट र कालो रंगको हाफ प्यान्ट लगाएको अवस्थामा यही असार 5 गते घर नजिकै फुटबल खेल्न जान्छु भनी हिँडेकोमा हालसम्म नफर्किएकाले देख्नुहुने वा भेटाउनुहुने महानुभावले फोन नम्बर 9824-6125-95 9825-6096 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।
6: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
7: यही असार 20 गते तेस्रो शनिबारको दिन
8: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
6: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिजो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
8: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
7: डाक्टर आउने दिन यही असार 20 गते तेस्रो शनिबार।
9: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772।
10: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ज।
11: बाबु, म तिमीलाई रोक्दिन, तर यति याद राख्नु, हामी दुईजनाको प्राण तिमी बाँडिएको छ छोरा।

0: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं।
1: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
2: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
1: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
2: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
3: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
4: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना हुने न पट्टा नि पैना त
5: अधि गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
4: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मा से गहना बना कान्छे के कतरा सुघर बना कन ल बाटी
5: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाई कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में गल गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टिकापुर प्रोप्राइटर फेहरी सिंह सुनार।
4: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 9864141208 और 9846649261।

0: के सो छैन यार।
1: शहर में भीड़ था मानसे अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो बात मा ठूलो समेला।

0: तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई, तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई।
1: बल्ल घरक भिटा निखौराइदा
2: मुस्कान पिथाई, घरक भिटा आमी निके निउराइ छौ कि का? खेतो म सखलान कला मिनी ले जाई पर्ना रह।
1: आब ओराइदा दान्ती बादर
2: ले ले, मै मिनी बना कर भेजिए तू लैदा दिस ना।
1: हाँ बिठा दाई। ओहो हेरो यहाँ भिटा म त दिलाको बा, माटीले तब दिहे पर टिका हाँ सब दिउ। अय्या दाई सब पका डरल
2: दाई, खै खै कहाँ काटन छै
1: यहाँ दाई, ये दाई ना जम का डरल।
2: अरे लेव हाली क्यों बाटो, मचे मुस्कान बट सब पका डरलस लेव हाली।
3: काबिल काकी काबिल,
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सब पका करलस कल
3: ना। क्या काकी तो मुस्कान निया त्या का स्थान थक बैठो ना, बेन काकी मुस्कान है ना स्वास्थ्य ना सुटाई हल सब नहीं करा थना।
2: बैठा भैया मुस्कान छाई स्वास्थ्य का सुटो टा
1: बैठा।
3: ओ काकी मुस्कान भलक लुगा घर गहना निकब जै ना मेकअप फांसर बना दी टा, वो हाथक चुड़िया की निकाल दी टा, वाकर कटला हाथ भर नहीं चला थना।
2: बैठा भैया सबको कर लगता हूँ आंदर पांदर चीर का इंजेक्शन ने तान का अथवा मुंह ले चूस का बीस पोर निकले ना हो कि
3: नहीं नहीं काकी, सबको कर लगता हूँ आंदर पांदर कटना दगना चूसना काम करा नहीं हुई, वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई, पानी के नहीं बुझली
2: उसी नो कल से धर मेरा लान खा वही निटार खा वाकर सबको कर लगता हूँ और लगा दी उठा ना नानू
3: उफे नहीं हुई काकी। घरेलू उपचार जस्ता चीज हरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझ्नु
3: नानु बुझ्नु। काकी रामेसाना मोटरसाइकल ले खाए कही झट्ट से झट्ट साधन खोज का एंटी भेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाई सेक जाई कल से मुस्कान होना झट्ट सुमर बनाई सेक जाई जा जाई का अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गांव से फोन एंटी भेनम केंद्र लगा पर था कही का स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती का तुम्हें दाता हम कही का हेरा पुरल हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फिर खुल हमार गांव से तो मिर्सहेत स्वास्थ्य संस्था को सर्पदंश उपचार कई जिना रही हो वहाँ ले जाए पर मुस्कान है ना।
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई ला
3: लेव लेव लेव काकी मुस्कान है ना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बिच्चा में बैठा रहा रही झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सीख जाए कला से मुस्कान है ना बताई सीख जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपवा डस्ल से मोटरसाइकिल स्वयं सेवी बलाई सर्पदंश उपचार केन्द्र में जाख जान बचाई वहां कौनो सवारी साधन उपलब्ध निहुलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: मोटरसाइकिल स्थापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खा समझन साथ फिर काट से संभव हुई सम कटुया सबको फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखाई सकले से हुकर सबको विषाण अलग निरलग पहचान कई खा सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सबको डसलक मने यहाँ न बताई सक दी था वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दी था सबको डसलक मने यहाँ न झट्ट से झट्ट उपचार केन्द्र में ले जा डाली यहीले ऊ मने एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पर्ना वो सही जानकारी लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैसा पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सक दिखा।
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटा का आज इठा का कना हो बाबा से उस तबाटिन गतिलो ठाउं से झोला अंदर से तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बिजापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
1: आई बुढल्ला सुन्तो कि नै वानन्दे भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उने ना पट्टा नि पैना त
2: अजी गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नि सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान से कतरा सुघर बना कन ल बाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।

0: फुका पिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: लैंगिक हिंसा प्रभावित गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवा का लागि टीकापुर अस्पताल में रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं
4: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
5: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
4: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
5: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
6: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 98584899213 इमेल ocmcticapur@gmail.com

जयगुरु बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपने मन की आवाज, समुन्नत समाज का लक्ष्य समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz के विद्युतीय तरंग मार्फत कार्यक्रम निशाना के सलाह के बैठा सकू सकू रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रह पर स्वागत के संगे अभिवादन कर चाहो मैं मिशन और मेरे टेक में बैठ के साथ भेटे बाबू रत्नापुर मगर और ये हो रेडियो टीकापुर FM 101 MHz जो कि हमारे वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टीकापुर FM एप्स हमारे पात्रों नेपाली पात्र मार्फत अपने के हमन सुने से ठिकाना में अपने कन जानकारी कराई दू जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विपचार में यात्रा में जहां हुई भी जन ठाव में भी कार्यक्रम में सहभागी जन भी विशेष करके आज एक दिन निशाना लगाइन हो संगारी विशेष करके निशान लगाइन हो आजकल काम के बेला बा शायद बिहार का थ्री अपने होंगे हमारे यहाँ लिंगो के एक परल टीकापुर नगर पालिका जोशीपुर भजनी कैलारी यहाँ आसपास के एक परल जानकी लमकी चुहा बर्दगोरिया ई आसपास और घोड़ा घोड़ी और यहाँ लिंग चाहे खेतवा लगाइना क्रम जारी हो सकल बा हमार ई कैलारी जिला में परल और अपने के बर्दिया और कसिन बा शुरुआत हुई था कि नहीं हुई थो बर्दिया बांके डांग वहां लिंग कसिन बावई और उस तक हमारे पश्चिम कंचनपुर और फिर लगभग लगभग शुरुआत हुई थी बाकी एक पर तो अपने के ठाव में कसिन बा हमारे यहां तो शुरुआत हो सकल बा तो कोई बिहार का ठुबी शायद कोई बिहार लगाए ठुबी कोई चाहे हर जोटा खेतो जोटा ठुबी कल से कोई मेरा बाना ठुबी जे जहां हुई भी जिसन ठाव में हुई तरह व्यस्त के बेला बा वही काम के बेला बा काम के बेला हुई थी हुई भी कल से फिर रेडियो सुना ठुबी कल से रेडियो में के साथ देवी और सहभागी भेजने भी निशाना लगा के लग जनौनी कहा कुद दिमाग खे न प्रश्न धारण के लिए दस्तावेज नासवानपुर खौली हुकरन के सिर संपत्ति झलके न मेरा प्रश्न हमने लेके आई थी तो वो प्रश्न के जवाब अपने के देख लग आई भी पहले जन भी तो दूसरों दूसरों जन भी तो तेसरो तीन ठो जन भी कल से कार्यक्रम के विनर भी विनर है हमने चाहे 100 रूपये के रिचार्ज कर दी थी कार्यक्रम में फोन करे लग और वस्ते के हमने चाहे विशेष करके अपने हुकन संगे रमाइलो रमाइलो गीत सुने न पर बाटी और मजा मजा गप फेन करना पर बाटी तो डायल करते कर भी सुनने का 95-61-255 के लाइन खुले बा तो ठीक एक ठो गीत जोड़ लगेबो बिहार छुपक छुपक छुपक छुपक छुप लगेबो बिहार छुपक छुपक छुपक छुपक छुप एकदम रमाइलो गीत राज कुसमी और सोनू कुसमी की आवाज में एकदम रमाइलो गीत मुंटी में छतरी ठकने में गगरी धनी गिरना पर्यो हमें गीत जोड़ गीत के पास मैंने बारू डायल करते कर दी।

हजुरलाई केही बिहार छुपक छुपक छुपक छुपक छु बिल्कुल रमाइलो गिजोली कार्यक्रममा बाटोमा मिसन भर्खर रेडियो खोलो हिविकाले यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz हजुरका हाम्रो वेबसाइट www.tikapureFM.org टिकापुर एफएम डट आज मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्र मार्फत आफ्नो गृहमा सुने सक्छ ठिकानामै साहारू जे जहाँ हुई खेतमे बारीमे दुकानमे मकानमे काममे धन्दामे बिजीमे विपचारमे यात्रामे जहाँ रहे सबै कार्यक्रममा सहभागी जनाइ विकनामे एप दोकान मेगा अर्जी अनुरोध और निवेदन गर्न चाहूँ तो कार्यक्रममा सहभागी जनाइ कवि विशेष गरी निशाना लगाएकलाई निशाना लगाइन हो हाम्रो प्रश्न आफ्नो उत्तर फोन के लगाइन हो कार्यक्रम निशाना यी टन्डलापुर घाममे बिल्कुल शीतल शीतल महसुस गर्थे अपने होगन के संगे हमरे रमायलो गप करना हो संगे हेरी असार महीना के आज लगभग लगभग 8 गते हुई गिल तब उन फिर पानी सही नहीं पड़ता हेरी हमारी ठाव अपने ठाव में पानी पड़ता कि

हमारी ठाउँमा पानी चाहिँ प्रति नै हो और किसान दाजुभाइहरूको एकदमै बियार लगेन समस्या सुविधा खेतमा पानी नै हो कुलोके पानी जहाँ सम सेकटै वहाँ सम छिनिक छोडा के हिसाब से तछार बछार रात रात भर जाग जाग के पानी चढा चढा के खेतो लगेन बेला हुई बाबी जैसे कि मोटर पानी से चढा के इंजन से चढा के फेन पानी तान तान के काम करती बाटे वहाँ के तर पानी चाहिँ भिन्न त नै पर्थ अब एक बेला में तो पानी पर्ना हो यी बेला में तो पानी नै पर्थ तब मारिसे फेन खेतमा लगेन फेन समस्या बा गर्मी फेन ज्यादै बा और पानी फेन नै हो एक्चुअली समस्या बा बियार लगा के सेक्लेसे फेन बियार मुना में राइक अवस्था बा का यी घाम के कारण जसम वर्षा के पानी मजा के नहीं बर्सिकल से हम खेतो लगाए फेन मजा नहीं था बर्खास्त फेन नहीं लागत कहना अपने सबको जन पता ही हुए होगे कोई बात नहीं कार्यक्रम में सहभागी जनते कर ठीक ठाक गीत जोड़ गीत के पास मैंने बाटू डाल करते कर 91.5 61.2 पर सुने के लाइन खोले बताओ सब लोग इन्जॉय करी ई रमाइलो गीत से

हजुर, मजा गीतके पाछे फेन्स स्वागत भयो कार्यक्रममा। कार्यक्रम भर्खर रेडियो खरल विचार सुन्ती बाटी कार्यक्रम हो निशाना निशाना नै बाटोमा हामी छैन निकै साध्य थिए बाबु रत्नापुर मगर। विशेष गरी यही कार्यक्रममा हाम्रा प्रश्न आफ्नो उत्तर रहत तो प्रश्न के सही जवाब देखलक हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनाक प्रणाली 091-5-61-255 अर्थ 091-5-61-255 लाइन एकदम खुला भा कार्यक्रम में सहभागी जनाविकल से अपने कर हमार रमाइलो सहभागी तरीका नाम जानकारी क्रम हमार संगे जस्ते जनाउनी जाना थीवी जनाउनी की हाई वस्ते के कहकूट जाना थीवी कहकुट के जवाब दहे उससे के दिमाग खेना प्रश्न थारून के घर में थारून के संस्कृति में रहल चीज हमारा विशेष करके हंसी नहीं थी तो उचित चिन्ह लखन कार्यक्रम में सहभागी जनाक प्रणाली 091-5-61-255 के लाइन मार्फत संघारी बिल्कुल आजकल व्यस्त के बेला हुई काम के बेला हुई अपने सब कुछ खत्म कर सकल हुई विषय एकदम अथवा गर्मी बा घाम में फिर एकदम अपन स्वास्थ्य है ख्याल करके काम कर भी कहना मैं जहां बारम्बार और अपन स्वास्थ्य है सर सफाई एकदम ध्यान दे के काम कर भी कहे कि एकदम काम तो कर ही पड़त का करबो तर फिर अपन शरीर है ख्याल करके स्वास्थ्य है ख्याल करके फिर काम करे पड़ना जरूरी है और सर सफाई फिर ध्यान देख पड़ना जरूरी है और पानी के मात्रा शरीर में कम हो सके तो पानी फिर एकदम टाइम टाइम में पीटी रवि का नाम कहना चाहम कहती फैन से इन्जॉय कर बैठा गीत से गीत के पास मैंने बाटो डायल करते कर भी 091-5-61-255 लाइन खुलाई बता समग्र इन्जॉय करी रमाइलो गीत सुन के

हजुर, बर्खा रे बर्खा रे बर्खा रे बर्खा, बिल्कुल रमाइलो गीत जोली। बर्खा तो बा तर बर्खा पानी नै एकदम बर्खा जस्तो नै लागत क्या, तर पानी वर्षे परल केना हो। किसान दाजुभाइ कहथिन कि पानी नै वर्षा तो कसै खेतो लगेन हो, कसैके जैन हो, कसैके खेतो मतलब अपन हरा भरा बनैन हो, केना वहाँके चिन्तित हुई। और हमरे सब कुछ चिंतित आदि कहे कि समय में पानी नहीं पड़े तो हमार खेतवा कैसी के हरियर परियर हुई और हमें धान कैसे उत्पादन करब। हरेक मेरा एक समस्या देखा पड़ना भी, अब धान उत्पादन नहीं तो हम हरेक चीज के किसान राज भाई हम समस्या भी कहे कि अतर लगानी कर ले रो अतना ध्योधोर मल खाद बिऊ के अतना लगानी कैले रहो अतना मेहनत कैले रहो, यदि सोचल सक नहीं हुई तो कठेक समस्या हुई ना हो तो स्वयं पटाई हुई सबको जन हम तब मारे अतरा ढेर ढेर लगानी करके पानी समय में नए आदि हमरे बढ़े से मतलब खेती नहीं कर पाप कल से तो हमन बहुत समस्या रही। हमरे काल बढ़े से हमारा धान उत्पादन हुई कल से हमरे भुखमरी के समस्या देखा पड़ना रही, तो तब मारे मौसम फिर साथ देख पाना एकदम जरूरी रह। अब आजकल तो संगा बिल्कुल बरखा कहाँ बा खेतवा लगेन आगे से शुरुआत फिर करे लगते हैं, खाई फैसन हसक लागत की कबू कबू तब मारे जब सम पानी मजा के नहीं पड़ी तब सम खेती लगेना फिर खास करके मजा नहीं रहा, तब मारे पानी पड़े ढेक पर तब जाके खेती लगेना मजा हो। अब धान लगेबी खेतवा लगेबी कल से समय तो हो तर पानी नहीं पड़ते कल से हमन जस्ते बिहार लगाए बिहार मरे से कट वस्ते के बिहार में घास जामे से कट मेर मेरा कीड़ा लगे से ठाई तब मारे ई मेरा समस्या देखा पड़े तो हमारे उत्पादन में भी कुछ कमी हुई तो इस समस्या है देखा पर के काम फिर ज्यादा ठप जाए का तो वो चीज से फिर हमन ख्याल करे एकदम जरूरी बगा थे। एक ठावगी जोड़ा के पास महीने बाटो डायल करते कर भी 091-5-61-261 के लाइन खुलेगा तब समय इंजॉय करी ये रमायलो गीत से।

0: हजुर मजा मजा गीत संगीत सुनेदी सुनेदी बाटी बारे कहे व्यापारिक बेकर जाए व्यापारिक विश्वामर जाए सर्ट कमर्सर बेग बेग के पास में बारू रेडियो छोड़ के कहूँ पे नहीं जाएगी तब संग एक एक चीज व्यापारिक विश्राम विश्राम के पास में आने बाटो
1: नाता छावा सांपन कुछ नहीं कराए सम सांप कुछ नहीं करता ले वो अपन ही चल गई था कुछ कराए था वो सब कुछ सांप बिखा थे नहीं रहता
2: बिखा हो कि नहीं हो कक कसी का चिन्ह ना तंदाई
3: ले नेपाल में पाँच दिन बिखा सांपन का विषय मसून एक थोड़ा ठह गए था जो उन खास कह कर रातिक समय में घर भीतर बैठा सेक था ये कटला से निबटाई फिर से आकर तर कटला पास है देह भाग जो निचलना कह कर सास ठहर जो निशेकना में से लक्वा हुई सेक था और रठह डोम जो उन बड़ा रिसाहा मेरी कर था इनकर फाट फूले था डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह कर संजय बिहान देख पड़ता निकर कटला से फिर लक्वा हुई सेक था वो और रठह कैली जाटक सांप निकर कटला कल से कटला भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकत से पाची होकर रकत बहना हुई से था उस समय का हमारे देशक तरह एक सक्कू भूभाग में पा देना बघोकने न फुनकार ना बाधे सांप ये सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिंक न कटाई एकदम खतरनाक रहा
4: बर्खा छा को अनाज बिक्रीना समय में सापन का कटाई अथवा जसाई का घटना ढूर बिना कर था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नाश विदेश सापन का जसाई का घटना ढूर बिना कर लग पा जाए
5: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नी रहा वह फिर यदि सपा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
6: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसा पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकते था
7: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसंधान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाण्डौ मिड टाउन का साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
1: यही असार 20 गते तेस्रो शनिवार को दिन
2: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
0: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिझो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
2: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
1: डाक्टर आउने दिन यही असार 20 गते तेस्रो शनिबार।
3: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ।
4: याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
3: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 00 08 र 9825 73 72।
5: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नै सकी, जबसम्म हाम्रै सक्कु भ्रष्टाचार विरोधी नै हुइबी, भ्रष्टाचार करुया मनै न खुल्के विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग, सक्कु जाने सहयोग करी।
6: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।
7: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
8: महीनै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
7: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन, बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
8: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तू मैं अब भी जाए।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इग्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: 02204।
1: ए रुक रुक रुक,
2: के भयो, किन कराएको यस्तो
1: दाई? यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे।
3: एनसेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड। यति मात्र होइन, लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
1: हो र? हो नि, एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड।
4: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एपमा गई लिनुहोस्। एनसेल नेपालकै लागि।
5: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
6: कोट पेट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैसे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
5: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठ भी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
6: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर, नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
5: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
7: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कुटपीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नाई देना, बोले नाई देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
1: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
2: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
3: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
4: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
2: डेलिभरीका लागि
4: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
2: टिकापुर कैलाली
5: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870710672।
6: स्वास्थ्यका लागि पानी।
7: घर परिवारमा सबै बिरामी आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि त अपनाउनु पर्यो। तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र? कहिले कोही बिरामी, कहिले कोही बिरामी, म त दिक्क भइसक्यो। कसो कालले छिटो नलाग्ला
8: होइन चाहिने जो माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेछ, के भएको छ हो तलाई?
7: हेर्नु न, साह्रै समस्या पर्यो क्या। कहिले के रोग आउने, कहिले के समस्या आउने, म त हैरान भइसके। छोरो उस्तै बिरामी छ, स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ, बा त्यत्रै बिरामी, सबै हैरान भने म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ, भोक लाग्या लाग्या हुन्छ, खानै सक्दैन।
8: तेरी माइला, यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ? त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो।
9: हजुर, स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन्। साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्।
10: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर, ठकरोला रोड, टिकापुर, कैलाली।

0: दाई
1: नाच बा कहाँ जाए लग त
0: पेसाब लाग्टा चर्पी जाइ टुका
1: ए रुको नाट पछि नोकल छे मै टर्च लाइट लट्ठी दिएटु लेख जाओ
0: का चाहिँ चुनु लट्ठी वा टर्च लाइट
1: का कर रही दाई राटिक बेला बाहे निक्र पर्ला छे वा टोयलेट जाइ पर्ला छे जहिया फे टर्च लाइट बार्ख को लम्बा लट्ठी लेख के जाइ पर्छ का कर कि बर्खा छ्याक बा साँप रहेछ थ टर्च को अजराले सापन ल्या खसेक दै था वो लट्ठी ठ्याक ठ्याक आओ सुनख साफ भक्त का
0: हो कतरा मजा सल्लाह डेली मार छोटकी छाई
1: दाई हम ना स्कूल मैडम सर मुख साफ मुख से ठाउसी न्याग पड़ला से वो काम कर पड़ला से जहिया फेठा फुसियार भी पथा गई सीखेल बाट का आम छेटवा दिवा झपा अथवा ध्यान चलक ठाव में न्याग पड़ला से लम्बा लट्ठी देख ठ्याक ठ्याक बजेटी न्याग पथा गई कल बाट
2: साफ बर्खा छ्याक समय में सुक्खा ठाव बैठ मन पड़े ई मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना बिलकोर से सुक्खा ठाव का खोजी में उपरा बाहर निस्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर साँप मानव बस्ती लग्न आई सक
0: विश्वास लग्ना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहे सक्दिथा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: पर कान्छा खालाको बिहाको न्युज आएको छ कसो हो त जाने विचार छ कि नै त
6: आफ्ना कान्छा भाइको बिहा नगइकन पनि भएन जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र पनि भाँची गयो
5: यतिकै लागि त सामुएल ज्वेलर्स बनेको है बरु अहिलै जाउँ एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ
6: आज त सन्त्याका बाले मनकै पुरो हर्यो छोट त बाई जाउँ
7: सामुएल ज्वेलर्स सुनसारीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनसारी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार सम्पर्क नम्बर 9868 4412 98486 39261

0: नहीं करने सर।
1: आओ आओ, तू पहले चाइना माता झील कर दो था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
0: कुछ नहीं हुई सर, पायलट के 15 सपवा रख लू, डर लग के घूमत रहते हूँ, जैसे चेस्ट लग लो तो हलचल नहीं कर, मोल सपो का इकट्ठा पहन लो तो पहले जाके
1: मोल सपो है ना, चलेना तो नहीं चलेगा ना?
0: नहीं चलेना सर।
1: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा पूरा से कह रहा हूँ, मोल सपो देखो कर से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूल से थी वाकर मरहल 20 असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल देख पड़ना सप्पा है ना नंता हाँ सारे पकड़ा नहीं भी
0: सर मुआल सप्पा देखना से क्या करना
1: सप्पा मुआल देख पड़ना से थे जाग से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुलक कुछ देर पास असम थे सप्पा दस सकत वह वर्ष से मुआल अवस्था में थे सप्पा हाथ से चलाए नहीं भी डेन तो इतना मा लट्ठी ले चला था मुआल नहीं मुआल कहीं का जाना से गिठा
2: मुआल सापन से सावधान रही मुआलवा मार्गी सप्पो होना पकड़ना खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासी सपवा दस से था संभव हुई सम सपो फोटो खींची वो पहचान के लायक विज्ञापन से संपर्क करी
3: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में सेव दिखा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी
6: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
5: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
6: मेरो खुतुर्के छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि
5: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
6: न्यू असम जाल्पा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
7: न्यू असम जाल्पा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टिकापुर न्यू असम जाल्पा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुम्का छड्के तिलहरी बाला चुरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिना राशनका गरगनारो पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 9868147979 9824625232 अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 9824628225

सामुदायिक रेडियो टीका पूरे एफएम के संजीक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उग्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोहला सौर पात्र नेपाली पात्र मफी सुन्टी धरबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर में महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवी का पोषण संबंधी अभिमुखीकरण पोषण सुधार में स्वयंसेवी का के भूमिका प्रभावकारी पत्रकार ऐश्वर्या कुंवर विरूद्ध अभद्र व्यवहार में मुद्दा दर्ता अनुसंधान जारी प्रतिनिधि संख्या टुंगो ने अलग अलग राष्ट्रपा के बंद शुरू नहीं हुई ओ विश्वकप फुटबल साउदी अरबिया की पर स्पेन की जीत खबर टीकापुर में महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवी का पोषण संबंधी अभिमुखीकरण कल बाट अभिमुखीकरण कार्यक्रम में दायु बच्चा के पोषण सुधार के लिए स्वयंसेविका के भूमिका थप बढ़ाईपना जोर दिलाट टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका चंद्रादेवी चौधरी पोषण सुधार के लाख 1000 दिन के दाई प्राथमिकता देके परामर्श दिलाओ स्वास्थ्य सेवा लेना सघना कलक बुटिलोट वार्ड नंबर 2 सीतापुर के स्वयंसेविका सरस्वती चौधरी घर घर में जाके पोषण संबंधी सचेतना फैलिना गर्भावस्था के सिहार जांच लगायत के बात बारे सचेत करना कलक बुटिलोट स्वयंसेविका के भिटामिन ए जुका के औषधि तथा अन्य पोषण कार्यक्रम संचालन में सघना कलबाट यहसंग स्वास्थ्यकर बानी बारे समेत जानकारी दिना पोषणयुक्त खानपान बारे जानकारी दिना कलक वडा नंबर 3 की स्वयंसेविका चंद्र चौधरी बोटिलोटी वडा नंबर 4 की स्वयंसेविका दुर्गा प्राजली गर्भावस्था से बच्चा 2 वर्ष के हुई जेलसम दायु बच्चा के सेहार पोषण सुधार बारे जानकारी देना कलक स्थानीय रूप में पैना पोसिलो खैना चीज प्रयोग करना प्रेरित करना बच्चा हाँ स्थान पानो पूरक आहार खोप लगायत बारे जानकारी देना कलक बोटिलोट टीकापुर में वैशाख में कलक पोषण लेखाजोखा तथ्यांक अनुसार टीकापुर के 75 बाल बालिका शीघ्र कुपोषण के जोखिम रहलवा अमीन समुदाय स्तर में पोषण सुधार के लाख स्वयंसेविका मार्फत सचेतना फैलाईपना बाल भिटामिन के प्रयोग बढ़ाईपना स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर राहुल बोटिलोट स्वयंसेविका के समुदाय में पोषण संबंधी ज्ञान व्यवहार परिवर्तन सेवा में पहुंच बढ़ना सघैना संघ कुपोषण न्यूनीकरण तथा स्वयं स्वास्थ्य सुधार में सघैची राहुल के कहवा रीमा बच्चा के पोषण सुधार के लाख स्वयंसेविका स्वास्थ्यकर्मी सरकार के नहीं हो कि परिवार ने जिम्मेवारी बन पर्ना मुटिलबाट कञ्चनपुर प्रहरी जनप्रतिनिधि संघ विवाद व हातपात कलाकार में पकड़ाउ पलक संचारकर्मी ऐश्वर्य कुंवर विरूद्ध अभद्र व्यवहार शीर्षक में मुद्दा दर्ता करके अनुसंधान आघा बढ़ेलक जनबाट जिला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी टेक बहादुर राव के अनुसार कुंवर के ऊपर जनप्रतिनिधि संघ विवाद तथा हातपात कलाकार में अनुसंधान रूचित हलवा प्रहरी के अनुसार वहां विरूद्ध अभद्र व्यवहार संबंधी मुद्दा दर्ता कलकट प्रहरी के जनरल अनुसार कुंवर भीमदत्त नगरपालिका 18 के वडाध्यक्ष रविन्द्र

0: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
1: फोन नम्बर 9894827359 र 9848423059। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जै भो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेक्ल।
2: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना पट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
3: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।
4: विश्राम पाछा सृष्टि स्वागत बा। महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या टुंगो नै लगलक। राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के बन्द सत्र अभियान शुरू हुई नै सकल हो। बिहान के 8:30 बजे से शुरू हुलक। कहिल दोस्रो दिन के कार्यक्रम दिन के 2:20 बजे सम्म शुरू हुन सकल नै हो। अभियान संचितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि गृह अनुर महलबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि परिचय पत्र देखेटी हलमा प्रवेश गर्न बाहिरिना खैना चिस्केकी समय बिताटी हलबाट पार्टीकी प्रवक्ता मणि छाले कुछ जिल्ला प्रदेश मधेस प्रदेश पालिका के अधिवेशन अन्तिम समय महिला कुछ के अधिवेशन नै हो कि तदर्थ समिति मार्फत अलग धेरसिन कारण प्रतिनिधि के संख्या रुजु गर्न वा थप गर्न कार्य हुटिरल बन्द सत्र शुरू नै हो। गोटेलबाट कयौं संघीय संस्थाहरू नै महाधिवेशन प्रतिनिधि मनै पर्लक कारण उहाँ फि दावी विरोधकै फारम भर्नबाट उहाँ अन्तिम टुङ्गो लगाकी प्रतिनिधिकै अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्न तयारी बा। महाधिवेशनकै कार्यक्रम सञ्चालन एवं व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक कविन्द्र बुलाकुटीकै अनुसार बन्द सत्र निर्धारित समय से कुछ घण्टा ढिला हुन जानकारी दिलबाट सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सेना सेवाग्राही केन्द्रमा धर्के सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिलबाट नेपाल टेलिकम भरतपुरकै कार्यालय निरीक्षणकै क्रममा सेवाग्राही केन्द्रमा धर्के जिम्मेवार पूरा गर्न मन्त्री डाक्टर तिमिल सेना निर्देशन दिलबाट उहाँकै हिंसाका सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाइनै पलक हुलसम गुनासो नकलक सन्दर्भमा हाली ढंगमा सेवा प्रदान गरेकी सेवाग्राहीकी विश्वास जिता करे काम निर्देशन दिलाबाट दूरसंचार क्षेत्रमा विगतकै तुलनामा धेर काम हुइल कति उहाँ जन अपेक्षा के अनुसार आफ्नो धेर काम गर्न बाँकी रहल गुठिलोबाट उहाँ एकाई सेवाग्राहीकी तिलक पैसा कार्य सञ्चालन हुटिरहल बा। उहाँके सबसे भारी जवाबदेता सेवाग्राही प्रति पर्न उहाँके अनुसार सेवाग्राही खुशी हुने कलसे कार्य सम्पादन करक पर्न नेपाल टेलिकमकै कार्यालय व्यवस्थित गर्न विषयमा चासो दिती उहाँकै भवन लगायत समस्याकै बारेमा कार्यरत कर्मचारीसँग एकल एवं संयुक्त रूपमा छलफल कलबाट नेपाल टेलिकमकै पुनः संरचना कर्मचारीकै वित्त विकास आवश्यक उपकरण अन्य समस्याकै बारेमा भरतपुर कार्यालय प्रमुख राकेश चौधरी सहितकै कर्मचारी र संचार मन्त्री समक्ष अनुरोध गर्न रहे।
5: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
6: यही असार 20 गते तेस्रो शनिबारको दिन
7: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
5: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिजो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
7: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला।
6: डाक्टर आउने दिन यही असार 20 गते तेस्रो शनिबार।
8: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो नि करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन हुकना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैला बाट, आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 51 43 26।

बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग्घ आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेम जानकारी कराई दिए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-72-59।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर बर
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब दिन ही जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
4: यही असार 20 गते तेस्रो शनिवार को दिन
5: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
3: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागु पदार्थ सेवन गर्ने
5: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने

महाराज परीक्षित श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भंडे चारोटा कुमाराज भगवान नारायण वासुदेव प्रभु को दर्शन भेट करना का लगी बड़ो गंभीर प्रेम का साथ में जा रहे वैकुंठ धाम भन्ने समन को कथा है सज्जावट जय बोलो श्री।